0: अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थे विश्वनाथ चंदो। श्यामा संगीत का ये क्रम जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सौरव मायती का गाया हुआ ये श्यामा संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू श्यामा संगीत बाय आवर आर्टिस्ट विश्वनाथ चंदो। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। वी नाउ प्रेजेंट श्यामा संगीत बाय आवर आर्टिस्ट सौरव मायती।

0: अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थे सौरव मायती। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम के समापन अंश में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं नमिता भट्टाचार्य का गाया ये श्यामा संगीत। तो आइए सुनते हैं ये श्यामा संगीत, कलाकार नमिता भट्टाचार्य।
1: यू वर लिसनिंग टू श्यामा संगीत। Our artist was Saurav Maiti. Concluding the program, we now present Shyama Sangeet. Our artist is Namita Bhattacharya.

0: हिंदुस्तानी भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। आज ही कलाकार थी नमिता भट्टाचार्य। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 2400 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी भक्ति संगीत।
1: यू वर लिस्निंग टू श्यामा संगीत। आवर आर्टिस्ट वॉज नमिता भट्टाचार्य। This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: You are listening to vocal recital by Shri Kumar Mardur. He was accompanied on tabla by Shri Uday Kulkarni and harmonium by Shri Shrikant Kulkarni. Continuing the concert, now listen to tabla solo by Pandit Raghunath Nakod. Taal, teen taal.
1: आप सुन रहे थे श्री कुमार मडूर का गायन. आपके साथ तबले पर श्री उदय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री श्रीकांत कुलकर्णी साथ दे रहे थे. कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे पंडित रघुनाथ नाकोड़ का तबला सोलो. ताल तीन ताल.

ಗೇಂದ ದಾ ಗೇಂದ ದಾ ಗೇಂದ ದಾ ಗೇಂದ

0: You were listening to Tabla Solo by Pandit Raghunath Nakod. He was accompanied on violin by Sri Shankar Kabadi. This program was contributed by Akashwani Dharwad, Anytime Indian Music.
1: अब तक आप सुन रहे थे पंडित रघुनाथ नाकोड़ का तबला सोलो. आपके साथ वायलिन पर श्री शंकर कबाड़ी साथ दे रहे थे. यह कार्यक्रम आकाशवाणी धारवाड़ द्वारा पेश किया गया.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग रामकेली में ख्याल गायन. आज के कलाकार हैं दिलीप कर्माकर. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आलोक मुखोपाध्याय और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं रथींद्रनाथ चक्रवर्ती. तो आइए सुनते हैं राग रामकेली में ख्याल. कलाकार दिलीप कर्माकर.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH Anytime Indian Music. This morning, we first present a Hindustani vocal rendition. Listen to a khayal in Rag Ramkeli. Our artist this morning, Dilip Karmakar. Accompanying on the tabla, Alok Mukherjee, and on the harmonium, Rathindranath Chakraborty. Now, listen to a khayal in Rag Ramkeli by our artist, Dilip Karmakar.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग रामकेली में ख्याल गायन सुन रहे थे। कलाकार थे दिलीप कर्माकर। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे आलोक मुखोपाध्याय और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। ये है रागम, 24 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आइए अब सुनते हैं राग अहीर भैरव में सितार वादन। आज ही कलाकार हैं विदुषी जया विश्वास। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तिमिर रॉय चौधरी। तो आइए सुनते हैं राग अहीर भैरव में सितार वादन। कलाकार विदुषी जया विश्वास।
1: यू आर लिसनिंग टू अ ख्याल इन राग रामकेली बाय और आर्टिस्ट दिलीप कर्मकार, एकम्पानिंग ऑन द तबला आलोक मुखर्जी एंड ऑन द हारमोनियम रथींद्रनाथ चक्रवर्ती। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। कॉन्टिन्यूइंग द कॉन्सर्ट, नाउ लिसन टू अ सितार रिसाइटल इन राग आहिर भैरव बाय और नेक्स्ट आर्टिस्ट विदुषी जया विश्वास, accompanying on the tabla, Timir Roy Chowdhury. Now, listen to a sitar recital in Rag Ahir Bhairab by your artist Vidushi Jaya Biswas.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर हिंदुस्तानी संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में सुनते हैं विदुषी योगिनी जोगळेकर ने प्रस्तुत किया राग अहिर भैरव। विलंबित एकताल में निबद्ध रचना के बोल है तेरो जिया सुख पावे, और द्रुत एकताल में निबद्ध रचना के बोल है बेग बेग आओ मंदिर। आपके साथ तबले पर है चंद्रकांत कामत और हारमोनियम की साथ की है पांडुरंग शिवलकर ने। तो आइए सुनते हैं विदुषी योगिनी जोगळेकर ने प्रस्तुत किया राग अहिर भैरव।

आप सुन रहे थे राग अहिर भैरव, कलाकार थी विदुषी योगिनी जोगलेकर। आपके साथ तबले पर थे चंद्रकांत कामत और हारमोनियम की सादगी थी पांडुरंग शिवलकर ने। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं विदुषी इंदिराबाई खाडिलकर ने प्रस्तुत किया राग भैरव बहार। विलंबित एक ताल में निबद्ध रचना के बोल है जलर या झुक झुक, और द्रुत एक ताल में निबद्ध रचना के बोल है डार डार पातन पर। आपके साथ तबले पर है विनायक नगरकर, सारंगी के साथ की है लतीफ अहमद खाने। तो आइए सुनते हैं विदुषी इंदिराबाई खाडिलकर ने प्रस्तुत किया राग भैरव बहार।

आप सुन रहे थे राग भैरव बहार, कलाकार थी विदुषी इंदिराबाई खाडिलकर। आपके साथ तबले पर थे विनायक नगरकर और सारंगी की साथ की थी लतीफ अहमद खाने। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी 24/7 DTH चैनल पर। भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का उपशास्त्रीय. पहले प्रस्तुत है राग तिलंग में ठुमरी. बोल हैं सांवरे सलोने मोरे श्याम. तबले पर आपकी संगति की है हशमत अली खान ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. In the program of light music, we now present a vocal rendition by Ustad Lakshman Das Sindhu. First, listen to Thumri in Rag Tilang. The words are Saanvre Salone More Sham. He is accompanied by Hashmat Ali Khan on tabla.

0: अभी आप सुन रहे थे राग तिलंग में ठुमरी, और अब पेश है मुल्तानी काफी, बोल हैं वाह वे सजन।
1: यू वर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग तिलंग एंड नाउ लिसन टू मुल्तानी काफी। द वर्ड्स आर वाह वे सजन।

0: उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग मुल्तानी काफी अभी आप सुन रहे थे, और अब सुनिए मिश्र काफी ठुमरी। बोल हैं ना ही पड़े मोसे, तबले पर आपकी संगति की है हशमत अली खाने।
1: यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन इन राग मुल्तानी काफी। नाउ लिसन टू ठुमरी इन राग मिश्र काफी। द वर्ड्स आर ना ही पड़े मोसे चैन, अकंपनीड बाय हशमत अली खान ऑन तबला।

0: अभी आप सुन रहे थे उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग मिश्र काफी में ठुमरी, और अब सुनिए सूफियाना कलाम। रचना बाबा बुल्ले शाह की है, बोल है की जाना मैं कौन।
1: यू आर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग मिश्र काफी एंड नाउ लिसन टू सूफियाना कलाम। इट्स कम्पोज्ड बाय बाबा बुल्ले शाह। द वर्ड्स आर की जाना मैं कौन।

0: अभी आप सुन रहे थे ये सूफियाना कलाम, और लीजिए अब प्रस्तुत है उस्ताद लक्ष्मणराज सिंधु का गाया राग मिश्र पीलू में ठुमरी। बोल हैं सैया बोलो मोसे तनक।
1: यू वर लिसनिंग टू सूफियाना कलाम। नाउ लिसन टू ठुमरी इन राग मिश्र पीलू बाय उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु। द वर्ड्स आर सैया बोलो मोसे तनक।

0: अभी आप उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग मिश्र पीलू में ठुमरी सहे थे, और अब सुनिए दादरा बोल हैं मैंने लाखों के बोल सहे।
1: यू वर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग मिश्र पीलू एंड नाउ लिसन टू दादरा। द वर्ड्स आर मैंने लाखों के बोल सहे।

0: उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया ये दादरा भी आप सुन रहे थे। और अब सुनिए राग मिश्र तिलंग में ठुमरी। बोल हैं अब के सावन घर आजा।
1: यू आर लिसनिंग टू दादरा एंड नाउ लिसन टू ठुमरी इन राग मिश्र तिलंग। द वर्ड्स आर अब के सावन घर आजा।

0: उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का गाया राग श्रुतिलंग में ठुमरी अभी आप सुन रहे थी। और अब सुनिए दादरा, बोल हैं दिल की ये नजर का निशाना हुआ।
1: यू वर लिसनिंग टू ठुमरी इन राग मिश्र तिलंग उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु। नाउ लिसन टू दादरा, द वर्ड्स आर दिल की ये नजर का निशाना हुआ।

0: अभी आप उस्ताद लक्ष्मण दास सिंधु का उपशास्त्रीय गायन सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी हशमत अली खान ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: इन द प्रोग्राम ऑफ लाइट म्यूजिक यू वर लिसनिंग टू अ वोकल रेंडिशन बाय पंडित लक्ष्मण दास सिंधु। ही वाज अक्नीड बाय हशमत अली खान ऑन तबला। दिस प्रोग्राम इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: नमस्कार श्रोताओं, रागम 24/7 DTH चैनल पर हिंदुस्तानी संगीत के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए सुनते हैं त्र्यंबकराव जानोरीकर का गायन। आपने प्रस्तुत किया है राग बैरागी भैरव। विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है, ख्याल के बोल है अब कर्म कीजे। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है और ख्याल के बोल है सुरस सुरस साधले। आपको सारंगी पर संगति कर रहे हैं मधुकर खाडिलकर और तबले पर संगति कर रहे हैं सूर्यकांत गोखले। आइए सुनते हैं त्र्यंबकराव जानोरीकर का गाया हुआ राग बैरागी भैरव।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे त्र्यंबकराव जानोरीकर का गायन, राग था बैरागी भैरव। आपको सारंगी पर संगति कर रहे थे मधुकर खाडिलकर और तबले पर संगति कर रहे थे सूर्यकांत गोखले। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं मास्टर कृष्णराव का गायन, राग तोड़ी। विलंबित ख्याल 3 ताल में निबद्ध है। ख्याल के बोल है बाजोरे महम्मद सा। द्रुत ख्याल 3 ताल में निबद्ध है। ख्याल के बोल है बरसत रस तौर मांगत हूँ। आपको सारंगी पर साथ कर रहे हैं मधुकर खाडिलकर और तबले पर है चंद्रकांत कामत। सुनते हैं राग तोड़ी, कलाकार मास्टर कृष्णराव।

श्रोताओं, हम सुन रहे थे मास्टर कृष्णराव का गाया हुआ राग तोड़ी। आपको सारंगी पर संगति कर रहे थे मधुकर खाडिलकर और तबले पर संगति कर रहे थे चंद्रकांत कामत। यह आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मिति थी। 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं पंडित जगदीश प्रसाद का ख्याल गायन राग रागेश्री. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं रघुनाथ नंदी और हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं सोहनलाल शर्मा. राग रागेश्री में ख्याल, कलाकार पंडित जगदीश प्रसाद.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट अ ख्याल इन राग रागेश्री. Our artist this evening, Pandit Jagdish Prasad. Accompanying on the tabla, Raghunath Nandi, and on the harmonium, Sohan Lal Sharma. Now, listen to a khayal in Rag Rageshri by Pandit Jagdish Prasad.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग रागेश्री में ख्याल गायन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे पंडित जगदीश प्रसाद। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे रघुनाथ नंदी और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे सोहनलाल शर्मा।
1: यू आर लिसनिंग टू ख्याल इन राग रागेश्री बाई पंडित जगदीश प्रसाद, एकम्पानिंग ऑन द तबला रघुनाथ नंदी एंड ऑन द हारमोनियम सोहन लाल शर्मा।
0: ये है रागम, 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आइए सुनते हैं पंडित देवाशीष भट्टाचार्य का सरोद वादन राग कौशिक कानड़ा। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित परिमल चक्रवर्ती। सरोद पर राग कौशिक कानड़ा, कलाकार पंडित देवाशीष भट्टाचार्य।
1: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we present a Hindustani instrumental recital. Listen to a sarod recital in Raag Kaushik Kanara. Our artist this evening, Pandit Devashish Bhattacharya. Accompanying on the tabla, Pandit Parimal Chakravarti. Now, listen to a sarod recital in Raag Kaushik Kanara by Pandit Devashish Bhattacharya.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग कौशिक कानड़ा में सरोद वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे पंडित देवाशीष भट्टाचार्य। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित परिमल चक्रवर्ती। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 2400 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You are listening to a Sarod recital in Raag Kaushik Kanara by Pandit Devashish Bhattacharya. Accompanying on the tabla, Pandit Parimal Chakravarti. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Raagam, 24/7, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. श्रोताओं, आज आप सुनेंगे हिंदुस्तानी ख्याल की बंदिशों पर आधारित रूपक बंदिशों का गुलदस्ता. वाचक स्वर BN गोस्वामी का. गायक कलाकार हैं रामदास मुंगरे, सुधाकर देवड़े और मीरा वी राव. आलेख है राम वल्लभ आचार्य का. प्रस्तुतकर्ता अभय फगरे. दिस इज रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. नाउ लिसन टू अ फीचर बेस्ड ऑन द कंपोजिशंस ऑफ हिंदुस्तानी ख्याल. नरेटेड बाय BN गोस्वामी. कंपोजिशंस संग बाय मीरा वी राव, रामदास मुंगरे एंड सुधाकर देवले. स्क्रिप्ट रिटन बाय राम वल्लभ आचार्य. फीचर प्रोड्यूस्ड बाय अभय फगरे.

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। विभिन्न राग रागनियों पर टिका है शास्त्रीय संगीत का महल। इसीलिए शास्त्रीय संगीत को राग संगीत भी कहा जाता है। स्वरों का विशिष्ट अनुशासन इन राग रागनियों के स्वरूप को गढ़ता है। रागों के स्वरूप को जिन शब्दों अथवा काव्यांशों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है उन्हें बंदिश कहा जाता है। यदि राग शास्त्रीय संगीत की आत्मा है तो बंदिश उसका जीवंत स्वरूप। राग की पहचान व उसका अस्तित्व है बंदिश। बंदिश को संगीत के लिए रची गई कविता कह सकते हैं। बंदिश में मुख्य बात होती है उसकी स्वर रचना। कविता और उसका शब्दार्थ गौण होता है। इसका प्रयोजन यह होता है कि संगीत के लिए उपयोगी भाव की स्थिति का निर्माण हो और उससे गायन की प्रेरणा प्राप्त हो। बंदिश शास्त्रीय संगीत के राग विशेष व ताल विशेष में लयबद्ध गीत है। इसमें कविता कंठ संगीत का अविभाज्य अंग होते हुए भी गायक कवि नहीं है और न ही काव्यानंद उसका उद्देश्य। इसीलिए बंदिश बनाना कवि का नहीं अपितु गायक का कार्य क्षेत्र है। संगीत मनीषियों ने अपने अपने समय में बंदिशों की रचना कर राग संगीत को समृद्ध करने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। ऐसे ही वाग्यकारों की कालजयी बंदिशें संगीत की अमूल्य धरोहर के रूप में आज भी नए संगीतकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लाए हैं ऐसी ही चुनिंदा दुर्लभ बंदिशों का गुलदस्ता।

0: बंदिश का शास्त्रीय विवेचन करते हुए प्रसिद्ध संगीतज्ञ श्री रामदास मुंगरे कहते हैं,
1: राग संगीत को सामने जब प्रस्तुत किया जाता है तो बंदिश का एक बड़ा भारी योगदान उसमें होता है। किसी राग का चलन मंद्र सप्तक में है, किसी राग का चलन मंद्र में है, मध्य में है, तार सप्तक में है, तो बंदिशें अलग अलग उसी राग में उस राग का स्वरूप अलग अलग रूप से निखारती हैं। ऐसी कतिपय चीज़ें अलग अलग घरानों में अलग अलग संगीतकारों ने अपने उपनाम से समय समय पे बनाकर प्रस्तुत की, लोगों के सामने रखा, लोगों ने उसको बड़ा सराहा।

0: मनरंग द्वारा राग यमन में निबद्ध इस बंदिश में रोम रोम से संगीत प्रस्फुटित होने की तीव्र आकांक्षा को अभिव्यक्ति मिली है। इससे प्रकट है कि बंदिश का निर्माण संगीतानंद के लिए है। संगीत उपयोगी भाव स्थिति का निर्माण करना ही इसका उद्देश्य है। यह भाव स्थिति बीज रूप में होती है, जिसे संगीत की भाषा में रक्ति बीज कहा जाता है। इसी रक्ति बीज से पूरी तरह पुष्पित, पल्लवित और सुफलित संगीत वृक्ष का विकास होता है। बंदिशों के स्वरूप के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं श्री रामदास मुंगरे।
1: कुछ कलाकारों का जो मिजाज है गाने के समय, वो मध्य सप्तक में उनका अच्छा रहता है। तो हर कलाकार ने जो अपनी रचनाएं की, वो अपने आवाज धर्मिता प्रस्तुति का जो स्कोप है, उसके हिसाब से रचनाओं का चयन किया, रचनाएं उस हिसाब से उन्होंने बनाई और वो जनमानस में प्रचलित हुई।

बंदिश में मुखड़े का सर्वाधिक महत्व है। जिस तरह व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से होती है, उसी प्रकार बंदिश के मुखड़े से संबंधित राग का स्वरूप प्रकट होता है।

अभी आपने राग बिहागड़ा में जो बंदिश सुनी उसमें आपने गौर किया होगा कि मुखड़े के पहले तान आती है जो एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है। इसी राग में एक दूसरे स्वरूप की बंदिश सुने जिसमें सम है तार सप्तक के सराज पर और लय के भिन्न भिन्न प्रकार राग को नया रंग देते हैं।

कलाकार ने अपने सुर और अपने मिजाज के ख्याल से चयन को किया कि वो उनका गाने का जो मिजाज था वो मंदर सप्तक में था, जिसे फयाज खान साहब की अमूमन बंदिशें मंदिर में चलती है, आगरा घराने वालों की बंदिशें मंदिर में ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि उनका गाने का जो अंदाज था, कि उनका जो आवाज़ लगाव था, वो मंदिर सप्तक में उनका मिजाज था। जैसे खान साहब गुलाम अली खान साहब का मिजाज था, गुरुजी कुमार गंधर्व जी का मिजाज था, कि वो तार सप्तक में उनका

बंदिश के शब्दार्थ का कार्य किसी एक भाव स्थिति या संगीतानुकूल भूमि निर्माण करना होता है, अतः शब्दार्थ से जो भी भाव स्थिति व्यक्त होती है वह उसकी स्वरचना से होने वाली भाव स्थिति से एक रूप होनी चाहिए। अभी आपने जो बंदिश सुनी उसमें आपने अनुभव किया होगा कि स्वर और शब्द दोनों ही एक भाव स्थिति व्यक्त करते हैं। यही विशेषता थी शोक उपनाम से रचना करने वाले शिवपुत्र कोमकली की, जिन्हें हम कुमार गंधर्व के नाम से जानते हैं। शब्दों तथा लय के साथ खेलने का उनका गुण विरला था, जो राग को नया आयाम देता था। और अब प्रस्तुत है इनायत पिया द्वारा रचित राग विहाग की है बंदिश, जिसमें आप राग का अलग ही स्वरूप पाएंगे।

और अब प्रस्तुत है बड़े गुलाम अली खान साहब द्वारा रचित एक बंदिश। मद्रास के श्री जी एन बी बाल सुब्रमण्यम के संसर्ग में रहते हुए खान साहब दक्षिण भारतीय राग से प्रभावित हुए और उन्हें उत्तर भारतीय राग सिद्धांत में ढालकर उन्होंने नए राग की रचना की, जिसे नाम दिया हिंदोली का सारंग।

स्वर और लय का प्रवाह कभी कभी किसी विशिष्ट ऋतु की प्रकृति अथवा प्रभाव को प्रकट करने की क्षमता रखता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के कुछ राग ऋतु विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुनिए राग मियां की मल्हार में एक बंदिश जो वर्षा ऋतु से संबंधित रचनाओं के लिए प्रयुक्त होता है।

ज़्यादा वाग्यकार संगीत रचनाकार आगरा घराने में हुए। आगरा घराने में सबसे नामी फनकार हुए फयाज खान साहब। उन्होंने प्रेम पिया नाम से कुछ रचनाएं गाई। उनके रिश्तेदारों में अनवर हुसैन खान साहब, रसरंग नाम से उन्होंने की। फिर दरस पिया, उनके बुजुर्ग कलाकार थे महबूब खां दरस पिया, रमजान खां रंगीले, अजमत हुसैन खां साहब दिल रंग, उनके घराने के प्रेम रंग,

यह थी राग चंद्रकोंस में गुणीदास की बंदिश। पंडित जगन्नाथ बुआ पुरोहित गुणीदास के नाम से लिखा करते थे और उनके उस्ताद विलायत खां साहब प्राण प्रिया के नाम से। जगन्नाथ बुआ अपनी रचना में अपने गुरु का उपनाम प्राण प्रिया भी प्रयुक्त करते थे, जो अपने गुरु के प्रति उनकी असीम श्रद्धा का परिचायक है। आइए अब सुनते हैं सनत प्रिया की रचना। राग तिलक कामोद की है बंदिश, मध्य एक ताल में निबद्ध।

जितना पुराना रागों का इतिहास है उतना ही पुराना बंदिशों का भी। आश्चर्यजनक बात है कि 100-200 वर्ष पूर्व बनाई गई बंदिशें आज उतनी ही लोकप्रिय हैं। इन कालजयी बंदिशों के रचयिता सदारंग, अदारंग, मनरंग, हररंग आदि कई श्रेष्ठ रचनाकार रहे हैं जिन्होंने अपने अमूल्य योगदान से संगीत परंपरा को समृद्ध किया है। इनमें सदारंग का योगदान महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत है इन्हीं की एक बंदिश राग सुहा में।

पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का संगीत में योगदान सर्वविदित है, किंतु वे एक अच्छे बंदिशकार भी थे, यह कम ही लोग जानते हैं। वे चतुर पंडित उपनाम से बंदिशें लिखते व स्वरबद्ध करते थे। उनकी रचना क्षमता का परिचय कराती है यह बंदिश जो राग सुहा में निबद्ध है। इसमें उनके कृष्ण प्रेम की भी झलक मिलती है।

शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत में मूल अंतर है काव्य और स्वर रचना की प्रमुखता का। जहां सुगम संगीत में काव्य पक्ष प्रमुख होता है और संगीत अथवा स्वर उसका अनुगमन करते हैं, राग संगीत में स्वर रचना प्रमुख होती है, शब्द उसका अनुगमन करते हैं। इसलिए बंदिश की प्रशंसा उसकी काव्यात्मकता के लिए नहीं अपितु स्वर रचना के लिए की जाती है। प्रस्तुत है राग भैरवी में विनोद पिया द्वारा रचित यह बंदिश, जो इस राग का अलग रंग दिखाती है।

जिस प्रकार ईश्वर एक होते हुए भी अनेक रूपों में प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार राग भी बंदिशों के माध्यम से अलग अलग रंगों में प्रकट होता है। लीजिए सुनिए भैरवी का एक और रंग बिखेरती कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल की बंदिशों पर आधारित रूपक बंदिशों का गुलदस्ता। वाचक स्वर था बीएन गोस्वामी का। गायक कलाकार थे रामदास मुंगरे, सुधाकर देवड़े, मीरावी राव। आलेख था राम वल्लभ आचार्य का। तबले पर संगत की सलीम अल्लाह वाले और नफीस अहमद खान ने। सारंगी पर थे कदीर खां। प्रस्तुतकर्ता थे अभय फगरे। हर पल हर समय डीटीएच रागम के लिए यह थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू अ फीचर बेस्ड ऑन द कंपोजिशंस ऑफ हिंदुस्तानी ख्याल। फीचर वॉज नरेटेड बाय बी एन गोस्वामी। कंपोजिशंस संग बाय मीरावी राव, रामदास मुंगरे एंड सुधाकर देवले। स्क्रिप्ट वॉज रिटन बाय राम वल्लभ आचार्य। द अकंपनीमेंट ऑन द तबला वॉज प्रोवाइडेड बाय नफीस अहमद खां एंड सलीम अल्लावाले। सारंगी अकंपनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय कदीर खां। फीचर प्रोड्यूस्ड बाय अभय फगरे। द प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: 7DTH इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।
1: ये है रागम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत। आज प्रस्तुत है कृष्ण चंद्र गुप्त का बजाया विचित्र वीणा वादन। आप सबसे पहले राग ललित प्रस्तुत करेंगे जिसमें आलाप, तत्पश्चात विलंबित तथा द्रुत बंदिश जो कि तीन ताल में निबद्ध है प्रस्तुत करेंगे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं भरत कुमार मिश्र।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे कृष्णचंद्र गुप्त का विचित्र वीणा पर राग ललित। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया विचित्र वीणा पर राग जो कौंस। आप पहले आलाप तत्पश्चात विलंबित एवं द्रुत बंदिश जो कि तीन ताल पे निबद्ध है प्रस्तुत करेंगे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं भरत कुमार मिश्र।

अभी आप सुन रहे थे कृष्णचंद्र गुप्त का बजाया विचित्र वीणा पर राग ज्योंकोस। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है रामेश्वर प्रसाद मिश्र का गाया राग मिया की तोड़ी। आप द्रुत बंदिश प्रस्तुत करेंगे जिसके बोल हैं अब मोरे नैया पार करूं। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं रजनीश मिश्र एवं हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं इलियास खां।

0: अभी आप फैयाज वसीफुद्दीन डागर का गाया राग भटियार सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए विदुषी शर्मिष्ठा सेन का सितार पर बजाया राग अलैया बिलावल।
1: दैट वॉज राग भटियार सांग बाय फैयाज वसीफुद्दीन डागर। नाउ यू शैल हियर अ सितार रिसाइटल बाय विदुषी शर्मिष्ठा सेन। शी प्रेजेंट्स राग अलैया बिलावल।

0: अभी आप विदुषी शर्मिष्ठा सेन का सितार पर बजाया राग अलैया बिलावल सुन रही थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: दैट वॉज राग अलैया बिलावल।

ध्यानमे धन्यासी रागम आदि तालम त्यागराज कृति. नेक्स्ट आइटम इज ध्यानमे इन धन्यासी राग सेट टू आदि ताला कंपोज्ड बाय त्यागराजा.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel।
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भक्ति संगीत के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं दादा अल्लाह की इस भक्ति रचना से, जिसे गाया है कार्तिकेय गायकवाड़ ने। संगीत निर्देशन है रविंद्र खासनीस का।

दादा अल्लाद ने रची ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी कार्तिकी गायकवाड़ के स्वर में। संगीतबद्ध किया था रविंद्र खासनीस ने। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है अशोक जी परांजपे की, जिसे गाया है प्रकाश घांगरेकर ने। संगीतबद्ध किया है जितेंद्र अभिषेकी ने।

अशोक जी परांजपे ने रची ये भक्ति रचना अभी अपने सुनी प्रकाश घांगरेकर के स्वर में, जिसके संगीतकार थे जितेंद्र अभिषेकी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना सुनते हैं सरोज गोखले के स्वर में। ये रचना है संत नामदेव महाराज की।

संत नामदेव महाराज ने रची ये भक्ति रचना अभी आपने सरोज गोखले के स्वर में सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संजीवनी जोशी और सहकारियों के स्वर में संत तुकाराम महाराज की ये भक्ति रचना।

संत तुकाराम महाराज ने रची ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी संजीवनी जोशी और सहकारियों के स्वर में। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना सुनते हैं अरुणा कुबेर के स्वर में, रचयिता है गंगाधर महांबरे।

गंगाधर महाम्बरे ने रची ये भक्ति रचना अभी अपने अरुणा कुबेर के स्वर में सुनी। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं श्यामकांत जोशी के स्वर में संत एकनाथ महाराज की यह भक्ति रचना।

संत एकनाथ महाराज की भक्ति रचना अभी आपने सुनी श्यामकांत जोशी के स्वर में। कार्यक्रम की अगली रचना है गदी माडगुळकर की, सुनते हैं समूह स्वर में।